FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आज शनिवार है, शत संवत 1948 की जेठ माह की 11वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 27 जून 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी ये सभा अब आरंभ होती है।

FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है।

0: अमरीका ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति धारा। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज शनिवार है। जी हाँ, संकट मोचन हनुमान जी का वार है। तो हम चाहेंगे सभी के जीवन से संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी की आराधना से ही क्यों ना हम आज अपने दिन की शुरुआत करें। तो चलिए हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं। स्वर हरिओम शरण का है।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा भक्ति धारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति, स्वर सुरेश वाडकर और लक्ष्मी शंकर का है।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर सुरेश वाडकर और लक्ष्मी शंकर का था। आप सुन रहे हैं गुना FM। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। और आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं राम कुमार कोलू और साथी।

इस लोकगीत के साथ ही हमारा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी अब समाप्त होता है। FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी

0: चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। समय हुआ है 7:05। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रातः 7:21 पर आप सुन सकेंगे जनउपयोगी सूचनाओं पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे। इस कार्यक्रम में हम आपको सूचनाओं के साथ मनोरंजन भी करवाएंगे फिल्म संगीत के द्वारा।

प्रातः 8 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात, और 8:15 पर रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से ही मॉर्निंग न्यूज। प्रातः 8:30 पर पर्यावरण पत्रिका वसुंधरा, कड़ी होगी 20, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजकुमार कौशल।

प्रातः 9 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन सकेंगे विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रम। और 9:30 पर हमारा कार्यक्रम होगा।

एक फनकार। हमारे आज की फनकार है संगीतकार उषा खन्ना, और जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रातः 10 बजे।

प्रातः 10:05 पर आप सुन सकेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजकुमार कौशल। प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक आप मनोरंजन कर सकेंगे विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी बीच दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे और

आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी बीच दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 2:10 पर रिले किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गए भजन सुनवाएंगे। शाम 6:30 पर हमारा कार्यक्रम होगा आज की शाम। इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज की बात का विषय रहेगा ग्राम विकास ही राष्ट्र विकास है। सामूहिक कृषि चर्चा में विभिन्न कृषि योजनाएं व उनके लाभ पर होगी चर्चा। और रात 8 बजे आप सुन सकेंगे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित सुर्खियों में। और 8:15 पर हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:45 पर दिल्ली से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या। और रात 9 बजे से सभा की समाप्ति तक आप विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

तो श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। FMN 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी

0: विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति के अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुच पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
3: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले यह भोपाल, उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर, चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन

ने ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने चार और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिलास्तरीय बाढ़ नियंत्रण स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: 人比。
1: अभी आपने सुना फिल्म कर्मयोगी का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया था आशा भोसले ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और बोल वर्मा मलिक के थे।

0: खूबसूरत सी आवाज थी किशोर कुमार की। फिल्म का नाम स्वर्ग नरक। आनंद बख्शी के बोल को संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रामेश्वर मीना, जिला टीकाकरण अधिकारी गुना, आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आगामी 28 जून रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाई जा रही है। अतः आप अपने 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र पर जरूर पिलाएं। पूरे गुने जिले भर में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पल्स पोलियो बूथ की स्थापना की गई है। वहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी। आप अपने बच्चों को जरूर वहां ले जाएं और पोलियो की दवा पिलवाएं। इससे आपके बच्चे को जिंदगी भर के लिए पोलियो से प्रतिरक्षण एवं बचाव सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।
0: आपने अपने रेडियो, मोबाइल और ऐप पर ट्यून किया है गुना FM और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे अपनी रेडियो दोस्त अर्चना के साथ। मोहम्मद रफी की मखमली सी आवाज जैसे कुदरत भी गीत गा उठी हो।

मोहम्मद रफी की आवाज में आज और कल फिल्म का गीत था और संगीत रवि का। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो श्रोताओं, साइबर से होने वाली जो ठगी है, जो लोगों को परेशान कर रही है, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, पर अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो साइबर सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग, फिशिंग अटैक, हैकिंग एवं फर्जी सूचनाओं के प्रसार जैसी घटनाओं की सूचना इस पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर कॉल कर आप शिकायत कर सकते हैं और साइबर से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं।

बड़ा ही खूबसूरत सा गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। यह था फिल्म गैम्बलर का गीत और इस गीत को लिखा था नीरज ने और संगीत में पिरोया था एस डी वर्मन ने। तो आइए अब आपको एक हमारे शिक्षक जगत को खुशखबरी दे दें। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आवेदन 5 जुलाई तक भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश भर के कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत पात्र शिक्षक के लिए हकदार होंगे। पुरस्कार 2 प्रमुख श्रेणियों में उच्च श्रेणी संस्थान और पॉलिटेक्निक संस्थान के शिक्षक में दिए जाएंगे। पात्र शिक्षक 5 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे। सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म का ये गीत था। बोल थे शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए अब नजर डालते हैं छात्रों और उनके अभिभावकों को पढ़ने वाले कहर पर। जी हाँ, पहले से महंगी कॉपी किताबों का बोझ तले दबे सीबीएसई स्कूलों के अभिभावकों को एक और झटका लगा है। नया सत्र शुरू होने के बाद बोर्ड ने थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य रूप से इसी सत्र में लागू कर दी है। इस नए नियम ने स्कूलों में फ्रेंच को इस कदर बाहर किया कि पेरेंट्स द्वारा 400 से 700 रुपए में खरीदी गई महंगी किताब रद्दी हो गई है। दरअसल नए फार्मूले में अंग्रेजी को विदेशी भाषा माना गया है, जिससे अब छात्रों के लिए फ्रेंच की जगह संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो गया है। विडम्बना यह है कि बुक डिपो वालों ने इन किताबों को वापस लेने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि पब्लिशर्स को माल वापसी की डेडलाइन निकल चुकी है। नतीजा यह है कि अब अभिभावकों को जेब पर जबरन दोबारा संस्कृत की महंगी किताबें खरीदने की दोहरी मार पड़ रही है।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में एस डी वर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की बोल और फिल्म का नाम था आराधना। जी हाँ, आराधना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत था। और आइए अब बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों में अब हम बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, जिले में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन रुक रुक कर प्री मानसून की वर्षा का दौर जारी है। 1 जून से अब तक 72.5 मिलीमीटर पानी की बरसात हुई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 224.9 मिलीमीटर सामान्य वर्षा दर्ज की जा चुकी है। दरअसल जिले की सामान्य वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार जून महीने में बारिश कमजोर होने से अभी तक सिर्फ 72.5 मिलीमीटर ही वर्षा हो सकी है, जो सामान्य वर्षा का 6.9% है। और अब जानते हैं कुछ सावधानियां। जी हाँ, मौसमी बीमारियों से बचने की सावधानियां जरूरी हैं, क्योंकि बदलते मौसम में स्वास्थ्य को खतरा अधिक रहता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने इससे सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि लापरवाही जानलेवा हो सकती है। सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ अंकित यादव ने कहा कि वर्षा के मौसम में

होने वाली बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और टाइफाइड हो सकते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार से बचने के लिए बारिश में ज्यादा देर तक ना भीगे। भीगने से बचे, भीगने पर शरीर को साफ कपड़े से तुरंत पोंछें। और उन्होंने मलेरिया से बचने के लिए भी अपने घर के आसपास गड्ढा ना होने दें, और गड्ढे हो तो उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें।

0: प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर एचएस बिहारी के बोल थे। तो इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएमएन 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में

0: श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में 8 से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा

0: रेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today.

0: First step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है।

0: और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
4: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions,

पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण का क्षेत्र काफी विशाल है। पर्यावरण शब्द परि धन आवरण के संयोग से बना है, जिसमें परि का आशय चारों ओर और आवरण का आशय परिवेश से है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वह आवरण जिसमें मानव, जीव जंतु, प्राणियों के साथ साथ वनस्पतियों से संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधों, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणामों का भी समावेश होता है। हम देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति के कारण आज हमने प्रकृति के स्वरूप को काफी नुकसान पहुंचाया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के चलते प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों का विनाश और प्रतिदिन उनका घटता स्तर वर्तमान में काफी चिंताजनक विषय है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना हम सभी का कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए आज विश्व के सभी देश इस विषय पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कई विश्व सम्मेलनों का आयोजन कर पर्यावरण के स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।

आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण केवल मनुष्य जाति का ही नहीं बल्कि इस धरा पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों का भी अस्तित्व संकट में है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, मौसम में बदलाव, आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवांशिक प्रभाव के काफी घातक परिणाम पर्यावरण में निवासरत सभी चर अचर राशियों पर पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भी पर्यावरण के स्वरूप को काफी महत्व दिया जाता था। जहां ऋषि मुनि वनों में साधना करते थे, बच्चों को अध्ययन के लिए वन और पर्यावरण का माहौल दिया जाता था, जिससे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का काफी विकास होता था। वे हर मौसम में स्वस्थ रहते थे, जबकि आजकल के बच्चे अपना अधिकांश समय मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलने में व्यतीत करते हैं और जरा से मौसम में बदलाव होने पर सर्दी जुकाम या बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, यानी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव है।

0: आइए अब सुनते हैं प्रगति ओझा से पर्यावरण संरक्षण विषय पर वार्ता।
1: पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, पर्यावरण से हमारा मतलब उस आवरण से है जो हमारे चारों ओर पाया जाता है। पर्यावरण में मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सहित समस्त चर अचर राशि समाहित होते हैं। इस प्रकार सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से आशय पर्यावरण के स्वरूप को बनाए रखने से है। हम देख रहे हैं कि नए नए आविष्कारों के चलते पर्यावरण का स्वरूप दिन व दिन दूषित होता जा रहा है। बड़े शहरों में इसके दुष्प्रभावों को काफी आसानी से समझा जा सकता है, जहां शुद्ध वायु, प्रदूषण एवं पेड़ पौधों के अभाव में लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं। आज विज्ञान की मदद से हमने कई आविष्कार कर अपने जीवन को सरल बनाया है, लेकिन ये भी सच है कि इसके लिए हमने प्रकृति के स्वरूप को भी काफी हानि पहुंचाई है। मनुष्य ने अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों का तो निर्माण किया ही है, लेकिन इसके लिए वनों का नाश किया है, जिसके कारण वन में रहने वाले असंख्य जीव जंतुओं का अस्तित्व आज समाप्त होने की कगार पर है। वनों की घटती संख्या के कारण ही उसमें रहने वाले जीव जंतु शहर की ओर पलायन करने लगते हैं और उन्हें अपने लिए हानिकारक समझ हम उनका नाश कर देते हैं, जो काफी चिंता का विषय है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि कोई वन्य प्राणी या जीव हमारे आसपास पाया जाता है तो तत्काल वन विभाग को संपर्क किया जाना चाहिए। वन विभाग के कर्मचारी इन जीव जंतुओं को सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ते हैं। दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं का संरक्षण भी हमारा कर्तव्य है। वहीं पेड़ पौधों का नाश कर हमने वर्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। दोस्तों, पर्यावरण के स्वरूप को बिगाड़ने वाले कई तत्व हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भूमिका प्रदूषण की है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण की यदि बात की जाए तो नदियों, तालाबों में मवेशियों को नहलाना, कपड़े धोना या कारखाने के दूषित जल जलाशयों में मिला देने से जल प्रदूषित होता है। इसके सेवन से हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। प्रतिवर्ष वर्षा की अपर्याप्तता के चलते हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि या अनावृष्टि

बदकिस्मती का सबसे ज्यादा कहर हमारे इन किसान भाइयों को ही भुगतना पड़ता है। जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए हमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तकनीक से वर्षा के जल को सीधे भूमिगत कर उसका सदुपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष वर्षा का उपयोगी जल नदी नाले के रूप में व्यर्थ में ही बह जाता है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के द्वारा वर्षा के जल का सदुपयोग तो होता ही है, साथ ही हमें वर्ष भर जल की उपलब्धता भी हो जाती है। जल ही जीवन है, इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में हम देखते हैं कि बिना कारण ही व्यर्थ में पानी बह जाता है। ऐसे स्थानों पर नल की टोंटी लगाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है। घरों में भी अनावश्यक पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उच्च सीमा में चलाने से वाहनों के प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे हमारे श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। बच्चे एवं बड़े उम्र के लोगों में इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। दीपावली या नवदुर्गा जैसे त्योहारों के समय सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग कारखाने की चिमनियों से वायु प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा सबसे अधिक होता है। हम कचरे के निपटारे के लिए उसमें आग लगा देते हैं। कचरे के निपटारे का ये सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि इससे विषैली गैस का उत्सर्जन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठंडों में अलाव जलाने के लिए लोग टायर, कचरे या पॉलीथिन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं हमारी श्वास के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है और हम गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए इस और भी हमारे द्वारा थोड़ा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पर्यावरण के स्वरूप को हानि पहुंचाने में पॉलीथिन की भी सबसे बड़ी भूमिका है। पॉलीथिन हर घर में पाई जाती है। पॉलीथिन सामान को लाने ले जाने का काफी सुविधाजनक साधन है, लेकिन ये उतनी ही पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कई बार देखा गया है कि अपने घर की साफ सफाई के बाद हम पॉलीथिन में कचरा भरकर सड़क पर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। दोस्तों, कचरा प्रबंधन का यह काफी गलत तरीका है, क्योंकि पॉलीथिन वैसे भी पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। वही पॉलीथिन में कचरा फेंकने से मवेशी उसका सेवन करते हैं, जो उनकी मौत का कारण बनता है। इसी प्रकार पॉलीथिन नालियों को अवरुद्ध करती है, जिससे पानी के निकास में अवरोध उत्पन्न होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है, जो काफी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए पॉलीथिन का उपयोग किसी भी स्थिति में करना पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है। वैसे दोस्तों, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। मित्रों, ऊर्जा संरक्षण से आशय प्रकृति प्रदत्त उन ऊर्जा के स्रोतों से है, जिनके उपयोग से हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। हम ये जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज विज्ञान की मदद से नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगा है, जिनसे कई कार्य सहज में ही पूर्ण किए जा सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी ऊर्जा के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली जैसी कई चीजों का उपयोग किया जाता है। वही जनसंख्या में वृद्धि होने से वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगती है। इन वाहनों में पेट्रोल डीजल का उपयोग दिनों दिन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। दोस्तों, पेट्रोलियम कोयला जैसे कई पदार्थ सीमित मात्रा में ही मौजूद हैं।

0: ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा ऊर्जा संरक्षण करना अनिवार्य हो गया है। हम सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग कर ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आज सौर ऊर्जा के माध्यम से कई कार्य किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के द्वारा खाना बनाना, बिजली का उत्पादन जैसे कार्य किए जाने लगे हैं। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके उपयोग से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही इनकी लागत भी काफी कम है। वैसे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विज्ञान द्वारा भी नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, किंतु हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम अपने स्तर पर इस विषय पर योगदान दें। दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो सीमित संख्या में ही मौजूद हैं, उनका संरक्षण कर ही इन्हें समाप्त होने से बचाया जा सकता है। हम देखते हैं कि अपने घरों या ऑफिस में व्यर्थ में ही बिजली अनावश्यक रूप से जलाई जाती है, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही बिजली की खपत करें। इसी प्रकार अपनी आदत अनुसार वाहनों का उपयोग करने से यदि हमें कहीं पास में भी जाना हो तब भी हम वाहन का ही उपयोग करते हैं, जबकि इसके विकल्प के रूप में पैदल भी चला जा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होगा। वैसे भी पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यदि ज्यादा पैदल चलने की आदत ना हो तो साइकिल का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि साइकिल चलाने से पैरों की अच्छी तरह कसरत होती है। इस प्रकार हम सौर ऊर्जा का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे पर्यावरण का स्वरूप प्रभावित हो रहा है, लेकिन इन विभिन्न प्रदूषण के स्तर को कम करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर हम इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ का वातावरण हरा भरा होता है वहाँ ध्वनि प्रदूषण कम होता है। वहीं वृक्ष वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण ही आज वर्षा प्रभावित हो रही है। तो मित्रों, वृक्षारोपण के माध्यम से हम काफी सीमा तक इन प्रदूषण को रोक सकते हैं। हम अपने श्रोताओं से आशा करते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण और उनके परिणामों को बताते हुए लोगों में जागरूकता का भाव निर्मित करें, ताकि अन्य लोगों में भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय या निजी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में वृक्षारोपण अभियान को शामिल कर हम अपने पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। जरूरत है लोगों में सिर्फ जागरूकता का भाव निर्मित करने की।
1: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण विषय पर वार्ता। वार्ताकार थी प्रगति ओझा।

और देखते रहे तो इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

दोस्तों, पर्यावरण के संपर्क में रहने के कारण ही प्राचीन काल में मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्न रहता था और सीमित साधनों में ही अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत आज मनुष्य के पास सुख सुविधाओं के अनगिनत साधन मौजूद हैं। इसके बाद भी हर व्यक्ति को अवसाद ग्रसित गुस्सैला प्रवृत्ति के होने के साथ ही नई नई बीमारियों से पीड़ित होते देखा जा सकता है और वास्तव में इन सभी चीजों के जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हमने ही अपने स्वार्थवश पर्यावरण के स्वरूप को बिगाड़ा है। हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध आहार, वायु, स्वच्छ जल की आवश्यकता है, जो पूर्णतः इस पर्यावरण पर ही निर्भर है। लेकिन जब पर्यावरण का स्वरूप ही अशुद्ध रहेगा तो हम कैसे अपने स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं? इसलिए आज आवश्यकता है इस विषय पर अपना योगदान देने की। कुछ छोटे मोटे उपाय कर हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखें, कूड़े कचरे का सही निपटारा और उनका प्रबंधन किया जाए, शासकीय कार्यालयों के साथ ही निजी भवन में वर्षा जल संचयन की प्रणाली उपयोग में लाई जाए, नदी तालाबों जैसे जल स्रोतों में कूड़ा न डाला जाए, पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल भी ना किया जाए, ये पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम करने के लिए सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाए, मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल पावर सेविंग मोड पर करें, जैविक खाद को अपनाया जाए। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के विषय में लोगों में जागरूकता का भाव भी निर्मित कर हम अपने पर्यावरण के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। विभिन्न आयोजनों के दौरान वृक्षारोपण कर हम इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पत्रिका वसुंधरा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
4: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: लें यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग,
1: दिल में एक लहर सी,
0: ऐसे गाने जो चुरा ले आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल,
2: तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर,
2: तुम आ गए,
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30 तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई, जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। समय हुआ है 9:30, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फनकार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अर्चना आपके साथ। आज मैं जिसके गाने आपको सुनवाने वाली हूं और जिसकी जिंदगी के बारे में आपको बताने वाली हूं, वह उन चुनिंदा संगीतकारों में से हैं जिन्होंने अपने अनोखे और मधुर संगीत से कई यादगार गाने तो गाए, फिर भी उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी की वे हकदार थीं।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं और जिसकी दास्तां हम आप सुना रहे हैं, ये एक ऐसे संगीतकार और गायिका रही जिसने तब अपना सिक्का जमाया जब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम सुनने को मिलता था कि एक औरत भी म्यूजिक डायरेक्टर बन सकती थी, जिसका नाम उषा खन्ना है।

7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में जन्मी उषा खन्ना का जीवन किसी कहानी से कम नहीं था। उनके पिता मनोहर खन्ना शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने अपनी बेटी के भीतर संगीत का बीज बोया। घर में हर रोज सुरों की महक घुली रहती थी और उसी वातावरण ने छोटी उषा को संगीत से जोड़ा। गीतकार इंदिवर, जो उनके पिता के मित्र थे, उषा की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ससधर मुखर्जी से उनकी मुलाकात कराई। लेकिन जब उषा ने गाना सुनाया तो मुखर्जी साहब ने ठंडा जवाब दिया, तुम लता और आशा जैसी नहीं गाती। उन्हें क्या पता था कि यह वह लड़की है जो एक दिन अपनी अलग धुनों से संगीत की दुनिया को बदल देगी। इंदिवर ने यशधर मुखर्जी को बताया कि उषा ने जो गीत सुनाया वह खुद का बनाया हुआ था। यह सुनकर मुखर्जी साहब चौंक गए और उषा को रोज दो गाने बनाने की चुनौती भी दे डाली। कुछ ही महीनों में उषा खन्ना ने अपनी पहली फिल्म दिल देके देखो के लिए संगीत तैयार किया। यह वही फिल्म थी जिसने न केवल उषा खन्ना को पहचान दी बल्कि शम्मी कपूर, आशा पारेख और राजेंद्र नाथ के करियर की भी शुरुआत की। उषा जी ने साबित कर दिया कि महिला संगीतकार भी म्यूजिक डायरेक्शन में कमाल कर सकती हैं।

उषा जी की धुनों में एक सहजता थी जो दिल को छू जाती थी। हर गीत में एक अलग रंग, एक अलग जज्बा झलकता है।

श्रोताओं, 60 और 70 के दशक का संगीतकारों की भीड़ से भरा समय था। शंकर जयकिशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, आरडी वर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस भीड़ में उषा खन्ना अकेली महिला थी। उन्हें ना तो पुरस्कारों की परवाह थी, ना ही शोहरत की चमक का लोभ था। उनका मानना था कि संगीत दिल से निकलता है और दिल को ही छू जाता है।

उषा खन्ना को कभी फिल्म फेयर का पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उनके बनाए गीत गायक येसुदास और किशोर कुमार को सम्मान दिलाते रहे। उषा खन्ना का निजी जिंदगी की कहानी भी कुछ फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। जब वह सावन कुमार की फिल्म के लिए संगीत बना रही थी, वहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। जल्द ही यह रिश्ता शादी में बदल गया, लेकिन इंडस्ट्री में सावन कुमार की दोस्तियों के चलते 7 साल बाद ही यह रिश्ता टूट गया। विडंबना यह रही कि तलाक के बाद भी उन्होंने सावन कुमार की फिल्म सौतन के लिए संगीत दिया और इस फिल्म के सारे गीत सुपरहिट हुए।

दोस्तों 1990 के दशक तक उषा खन्ना सक्रिय रही। उनकी आखिरी फिल्म दिल परदेसी हो गया 2003 में रिलीज हुई, पर बदलते संगीत स्वाद ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। नए दौर की बीट्स और रैंप के बीच उनकी मेलोडी खोने लगी, फिर भी उन्होंने कभी संगीत से नाता नहीं तोड़ा। आज भी उनके गाने पुराने रिकॉर्ड प्लेयरों और दिलों में जीवित हैं।

दोस्तों, गुना एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फनकार और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम एक फनकार में संगीतकार और गायिका उषा खन्ना की। उषा खन्ना सिर्फ एक संगीतकार नहीं थी बल्कि उस दौर की प्रेरणा थी जब महिलाओं को सिर्फ गायिका या अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजा खोला, इसलिए वह हिंदी फिल्म संगीत की

दोस्तों उषा खन्ना ने अपने पूरे करियर में 200 से अधिक फिल्मों में के लिए लगभग 800 गानों की रचनाएं की। उन्होंने हिंदी के अलावा मलयालम फिल्मों में भी बहुत मधुर संगीत गाए। चूंकि उन्हें खुद इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने करियर में कई नए गायकों को ब्रेक दिया। उन्होंने सोनू निगम, पंकज उदास, मोहम्मद अजीज और हेमलता जैसे गायकों को अपनी फिल्मों में गाने के बेहतरीन अवसर प्रदान किए।

तो दोस्तों, उषा खन्ना जी के बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी ही कम होंगी, पर आप और हम जानते हैं कि अब कार्यक्रम को समापन का समय आ गया है। तो आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार उषा खन्ना के बारे में। आलेख और स्वर अर्चना रघुवंशी का था। तो अब इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त अर्चना को। नमस्कार। FMN 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गांवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुराने कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखिला नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरवेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि, संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में वत्साखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का

स्थान है। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना की आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी, आकाशवाणी
1: FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। समय हुआ है 10:05, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो FM गुना और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजकुमार कौशल।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना मैडम, मैं गुना से रवि कुशवाहा बात कर रहा हूँ। मैडम
0: रवि कुशवाहा जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम,
0: बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम जी मेरी दुकान है मैडम सकतपुर रोड पर, मैडम किराने की दुकान पर ही बैठा रहता हूँ मैडम, और दिन भर एफएम सुनता रहता हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो आकाशवाणी गुना के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको।
1: मैडम सुबह चालू कर लेता हूँ, टून से ही चालू हो जाता है मैडम, फिर वंदे मातरम, फिर भक्ति धारा, फिर लोकगीत, अनुरोध गीत।
0: अच्छा अच्छा, यानी आप सुबह से ही अपना रेडियो ऑन कर लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: टीवी चालू कर लेता हूँ, टीवी की काफी अच्छी लगती है मैडम जब आती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ मैडम
0: बताइए आज क्या फरमाइश है रवि जी।
1: मैडम आप सुना है महुआ फिल्म का, दोनों ने किया था प्यार मगर तू भूल गई, महुआ फिल्म का गीत है मैडम।
0: ठीक है, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते,
1: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से। आपसे पहली बारी बात हो रही मैडम जी मेरी।
0: अच्छा बताइए।
1: मनीषा रघुवंशी बोल रही हैं आप?
0: बिल्कुल, मैं मनीषा ही बात कर रही हूँ
1: जी। बढ़िया है मैडम जी।
0: अच्छा गोपाल जी, क्या करते हैं आप?
1: खेती करते हैं मैडम जी, अभी तो खेत पर हूँ, पंजा चला रहे हैं क्योंकि मक्का की वो नहीं करेंगे, अब फिर बारिश हो जाएगी। तो
0: बारिश के इंतजार में है?
1: हाँ बारिश नहीं, अभी कम हुई थी परसों के रोज।
0: बहुत कम पानी आया है, थोड़ा सा अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा है
1: जी मैडम जी।
0: अच्छा बताइए गोपाल जी।
1: आपसे नियमित सुनता हूँ, पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम, मैं तो रोज ही सुनता हूँ।
0: अच्छा तो सुबह से ही आप लोकरंजनी और रामचरितमानस सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ 6 बजे से आती है भक्ति धारा, 6:30 बजे रामचरितमानस, लोकरंजनी, अनुरोध गीत, सुबह सवेरे युगवाणी आता है, आज की शाम आता है, और विविध भारती के जुड़ जाता हूँ 11 बजे सुबह से। सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैं तो, बहुत सालों से सुन रहा हूँ मैडम जी।
0: यानी बहुत नियमित श्रोता है आप हमारे?
1: नहीं मैं श्रोता हूँ मैडम जी।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत खुशी हुई आप जैसे श्रोताओं से बात करके, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता हमें इतना पसंद करते हैं कार्यक्रमों को। बताइए
1: मैडम जी, गाना सुनना है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में।
0: हाँ कौन सा गीत?
1: वो यानी राजा फिल्म का सुनना है, अरे किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, टाइटल सॉन्ग है ये, बार समीर का लिखा हुआ, नदीम सरवन का जी।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना
1: जी,
0: कौन बोल रही? पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
1: मनोज नामदेव जी बिल्कुल नियमित श्रोता है आप हमारे।
0: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
1: क्या हो रहा है इन दिनों शिवपुरी जिले में?
0: हाँ दीदी शिवपुरी जिले में कुछ नहीं हो रहा है इस समय तो, और बारिश का इंतजार कर रहे हैं हमारे सभी श्रोता और हमारे सभी किसान भाई।
1: बिल्कुल बारिश का इंतजार चल रहा है। और आपका क्या ऐसा काम चल रहा है?
0: बिल्कुल दीदी हमारा काम तो आपका आशीर्वाद है कृपा भगवान की एकदम बढ़िया चल रहा है। आकाशवाणी गुना भी बिल्कुल बराबर कंटिन्यूअस सुनते रहते हैं।
1: बिल्कुल गुना आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इन दिनों?
0: बिल्कुल कभी नहीं हुआ जो आपका कार्यक्रम मिस किया हो, लगातार रेगुलर सुनता हूँ आपका कार्यक्रम।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत खुशी होती है श्रोताओं का ऐसा आकाशवाणी गुना के लिए प्यार देखकर। बताइए मनोज जी आज क्या सुनना चाहेंगे?
0: जी दीदी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा दीवाना और उसमें एक गाना है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा कुछ भूल गया कुछ याद रहा।
1: ठीक है, अब सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
1: जी, मेरा नाम मांगीलाल लोधा है, ग्राम सोरामपुरा, तहसील रावत, डिस्ट्रिक्ट गुना, एमपी।
0: अच्छा, मांगीलाल लोधा जी।

0: जी मैम।
1: क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
0: जी मैं गुना में एक ऑनलाइन शॉप पे काम करता हूँ मैम।
1: अच्छा, प्रॉपर गुना में रहते हैं आप?
0: नहीं, सोरामपुरा गांव है, तहसील रावगढ़ से। गुना में मैं बच्चों की पढ़ाई के संबंध में, गुना आ गया तो गुना में मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, गुना में जॉब करते हैं,
0: कॉलेज टाइपिंग दुकान है ये।
1: अच्छा अच्छा, तो मांगीलाल जी क्या दुकान पर ही सुन लेते होंगे आकाशवाणी का गुना केंद्र तो आप?
0: जी बिल्कुल, एयरफोन लगा रहता है, मैं परमानेंट एफएम सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक है। मैं, मेरी मम्मी सुनती थी लगभग मैं पैदा होने से पहले ही।
1: हाँ, परिवार में पारिवारिक सदस्य सुनते थे, तो आपको बचपन से ही रेडियो का शौक रहा?
0: जी मैम।
1: बताइए मांगीलाल,
0: 2002 के आसपास से मुझे जानने लगता हूँ, मैं रेडियो अच्छी तरह से सुनता हूँ।
1: अच्छा, तो पसंद आते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
0: जी मैम, जंगल डायरी चलता था, उसमें मैंने 2 बार इनाम भी जीता है रेडियो।
1: अच्छा, पहले?
0: यस मैम।
1: बताइए,
0: मुझे तो इतना भी हो जाता है कि कोई सा भी गाना चालू होता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कौन सा गाना है, ये कौन से गायक का है।
1: बिल्कुल, क्योंकि रेडियो के जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो संगीत की और गीतों की गहरी समझ रखते हैं, और उन्हें पता भी होता है कि कौन सी फिल्म का कौन सा गीत है।
0: यस मैम, टून से ही समझ जाते हैं।
1: तो आज कौन सी फिल्म का कौन सा गीत आपने पसंद किया है?
0: जी मैम, मोहम्मद अजीज की आवाज में गा, वो मोहम्मद रफी के ऊपर ही है ना, फनकार ऐसा तेरे वादे आया।
1: मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया।

0: हेलो एफएम गुना,
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लाल में मैं पीथमपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा गांव है रामनगर टप्पा बमोरी।
0: अच्छा अच्छा, नरेश जी पीथमपुर में आप नौकरी करते हैं? पहले भी आपका कॉल लग चुका है।
1: हाँ जी जी जी, एम्प्लॉई हूँ मैं। ट्रक और बसेस का मैन्युफैक्चर होता है यहाँ। और पहले भी मैंने कॉल किया है और ये काफी अंतराल के बाद हेलो एफएम गुना में कॉल कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो क्या पीतमपुर में बारिश कैसे है इन दिनों?
1: हाँ, अभी दो दिन से बारिश हुई है यहाँ, तो मौसम में ठंडक हुई है बिल्कुल, नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी थी।
0: अच्छा, तो पर्याप्त बारिश शुरू हो गई है? मतलब
1: नहीं, पर्याप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि मौसम ठंडा हो गया है।
0: अच्छा, मौसम ठंडा हो गया है और हल्के बादल छाए हुए होंगे।
1: हाँ, बादल छाए हुए हैं, दो दिन तक तो लगातार बादल छाए रहे और हल्की हल्की बारिश भी जारी रही।
0: चलिए, ऐसा ही मौसम सब जगह हो जाए तो बहुत अच्छा रहे पूरे मध्य प्रदेश में। अब बताइए, आज अपनी पसंद बताइए।
1: पसंद है घटा छा गई है बाहर आ गई है।
0: घटा छा गई है बाहर आ गई है फिल्म का

0: नाम बताइए।
1: फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन गीत बड़ा अच्छा था।
0: हाँ, गाना बहुत खूबसूरत है। चलिए कोई बात नहीं, फिल्म का नाम हम देख लेंगे। गाना बेहद अच्छा पसंद किया है, मौके के अनुसार ही है। और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: हाँ मैडम, मैं भोलाराम कुशवाहा बोल रहा हूँ।
1: हाँ अब आई,
0: भोलाराम कुशवाहा परवार से बोल रहा हूँ, तहसील भमोरी थाना जागर गुना जिला।
1: क्या करते हैं भोलाराम जी?
0: सकतपुर में निवासी कर रहा हूँ, नहीं रहता हूँ सकतपुर, और मैं ऑटो चलाता हूँ।
1: ऑटो चलाते हैं?
0: ऑटो चलाते हैं। हेलो एफएम गुना का आकाशवाणी भी सुनते रहते हैं, बहुत सी खबर मिलती है और दीदी बहुत सा आनंद आता है, और सुबह हनुमान चालीसा का भी बड़ा सत्य रहता है हमारे पास। हनुमान टेकरी, राम टेकरी, लक्ष्मण टेकरी, सीता मैया, जानकी का ऐसा रह रहे की स्थान है, देवियों का रे की आह्वान है, सीता गुना क्षेत्र के लोगों का भी, भारवास के लोगों का भी दर्शन करने के लिए स्वभाव है हमारी गुना नगरी में।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने गुना नगरी के लिए। और आज क्या सुनेंगे भोलाराम जी, क्या चाहते हैं गीत?
0: गाना आता है कि पापा जल्दी आ जाना, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से।
1: जी बढ़िया, ये वाला गाना सुनवा देंगे आपको, और फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: आपके विश्वास के 90 वर्ष, आपके साथ के 90 वर्ष। सूचना, ज्ञान और मनोरंजन के 90 वर्ष। जी हां साथियों, आपकी सेवा में तत्पर आकाशवाणी के 90 वर्ष। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ और करते रहिए स्वस्थ मनोरंजन।
1: कार्यक्रम हेलो एफएम गुना, आकाशवाणी का गुना केंद्र।
2: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैम, मैं हरी सिंह यादव बोल रहा हूँ, जिला ललितपुर, ग्राम डोंगरा कलां से।
1: ललितपुर से बात कर रहे हैं हरी सिंह जी?
2: जी मैम।
1: अच्छा, तो क्या आकाशवाणी के गुना केंद्र के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
2: जी मैम, मैं पूरे प्रोग्राम सुनता हूँ।
1: अच्छा, मोबाइल ऐप के जरिए सुनते हैं?
2: कॉल लग गया, मैं मेरे खुशी के मारे ठिकाना नहीं है मेरा।
1: हमें भी बहुत खुशी हो रही है। क्या पहली बार कॉल लगाया क्या आपका? अच्छा, और ललितपुर में इन दिनों क्या हो रहा है आपके उधर?
2: अभी तो मैम कुछ नहीं, बारिश का इंतजार हो रहा है। बारिश हो जाएगी तो फिर बोनी करेंगे।
1: बोनी करेंगे, बिल्कुल। तो बोनी के इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे सभी किसान भाई बहन इस समय।
2: हाँ मैम।
1: तो हरी सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: मैम हम शोले फिल्म का सुनना चाहते हैं।
1: शोले फिल्म का कौन सा गीत?
2: चोर गरम।
1: शोले फिल्म का गाना है ये?
2: हाँ जी मैम।
1: चना चोर गरम, ठीक है, सुनवाएंगे आपका पसंद का ये गीत। फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: सुनील साहू मधुसूदनगढ़ में क्या करते हैं सुनील जी?
1: जी मैडम जी, मेरी दुकान है, सिलाई मशीन की दुकान खोली है और ड्रेस सिलने की दुकान है।
0: अच्छा, तो आप ही दोनों संभालते हैं?
1: जी जी जी।
0: तो सिलाई क्या आपके सीखी है कहीं से?
1: सिलाई मशीन बेचते हैं, नई वाली सिलाई मशीन।
0: अच्छा, बेचते हैं, मैंने सोचा सिलाई करते हैं। चलिए, तो कैसी चल रही है दुकान आपकी?
1: ठीक चल रही है, अभी तो बरसात है वैसे।
0: अच्छा, और आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी जी मैडम, इस पिक्चर का नाम तो पता नहीं, गाने का बोले क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलवर आने वाले।
0: हाँ, ये गाना तो बड़ा ही प्रसिद्ध है और काफी बार हमारे रेडियो पर भी बजता रहता है। फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना आकाशवाणी केंद्र। हेलो
1: हेलो राधे राधे जय श्री राम।
0: राधे राधे कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम राम बाबू ओझा, शिक्षक साढ़ोरा।
0: राम बाबू ओझा, आप
1: शिक्षक साढ़ोरा असुनरवाल।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हेलो एफएम गुना। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत कर रही थी मनीषा रघुवंशी। तकनीकी सहयोग था मुकेश चौहान का, प्रस्तुति सहयोग था हरिशंकर शिभरे का, और प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। एफएमएन 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया। जिनकी

0: को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत से सजाइए गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका।

0: चित्र भारती
1: साइलेंस लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने सा

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने

सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजी, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: अभी यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया।
2: वादा तुमसे है वादा।
0: सन 1976 में आई फिल्म कादम

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत

0: जानी मानी बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जानी माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोडूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा

0: फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाए या ना सुन पाए, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुना

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।

0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अभिलाषा फिल्म के स्कीट में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं। और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत, गुलशन बावरा ने इसे लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया कभी धूप तो कभी हो छैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीजें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों के खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हम सफर बन गए और जैसे पति पत्नी कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले, कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी। उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है वाकई जो चीजें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है, ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताजा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगीत साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे। और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती जरूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारवां छूटता है, साथ ही संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवरत चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती है कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थी, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियां, क्योंकि आमतौर पर सखियां तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तीज रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टैक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं, मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के।

में जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन की इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते जमाने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और उसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफर गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया

घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी बारात कभी बिना सामान चले। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रिश्ते, जहां एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी। जब हम सफर साथ छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो संगीत हो राग हो या चित्रपट की कहानी हो। हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में, एक एक पंक्ति में, एक एक गीत में। आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल, मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है। जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र यार दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी कि जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजी ने, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आपसे जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। ये हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफर की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नजर आती है, लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफर की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहां आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफर की पोस्ट नजर आ जाएगी और आप वहां कमेंट के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहां पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मजा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतने बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त जरूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारी एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारी एक और साथी कहते कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के जमाने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयां लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई, और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले और मिले तो वो किस्सा क्या है। और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहते हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भरकर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनः

जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का, कह रहे हैं कि सब कर्म का भोग है, रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं। वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है। लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई, सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं। समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती है, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते कि मैंने आपको भी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जहां याराना वो खूबसूरत रिश्ता है, जहां शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज में है।

0: तो कभी छा,
1: कभी धूप कभी छाव। कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, चित्रगुप्त का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, संगीत किसकी आवाज में गीत हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा है। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर, नयन जीवंत हो तुम अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है। हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहां उसमें जो पंक्तियां होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़ी वाला था, वहां के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियां और दोस्त भी, सुरीला सफर के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फोन आना। वही हमारे एक साथी कह रही कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफर की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं हमारे साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियां आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने जमाने की हूँ जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फोन उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में। कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं, हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहां पुरानी क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था उस दिन, सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहां मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में और वहां उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे, दर्शन के बाद हमारी वहां पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ, फिर हम वहां से टैक्सी किराए पर लेकर जनमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है।

अनुबाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। वही अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहां पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त से 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई, हमने पुरानी बातें की, तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें यादें ताजा की होंगी। तो चलिए एक याद ताजा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

किया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40-45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव के काम से गांव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो भी होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले एक कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना, लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें। और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद

स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

माँ अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है।

बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

0: बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता है।
1: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर

0: रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के

मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुथियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: The Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी

0: मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में

0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले

जीआई टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियां भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो

ने आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंचा है गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित,

छोटू डुनडुन और उनके परिवार की, और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के ही इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से, एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची, प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छहगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो?
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अब छिपाओ दुराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें है।

0: भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम ही जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा।
2: ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो। अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयां।
2: शुक्रिया, मुझे आज्ञा दो। तुम्हारे हक के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताक के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा मत मानना भारती,

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहते हो। ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा? हद्दे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो।

0: अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
1: जानम्मा
0: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
3: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
3: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
3: अच्छा अच्छा,
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
3: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
3: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
3: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
3: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
3: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
3: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
3: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
3: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
3: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
3: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
3: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
3: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए
3: हैं?
1: तुम नहीं गई?
3: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
1: ओह अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
3: चुप है ना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो ये है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
3: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
3: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सूझता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं तो मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ?
4: डॉक्टर साहब, मुझे बचाइए,

0: मेरा जीवन बर्बाद करके। अरे अरे ये तो बेहोश हो गई। हाय इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
0: चलो चलो
1: बांगर, वो बस ले आ जल्दी से।
2: बेटी इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
2: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
2: बेटी कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वह देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
2: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठाकर ले गए।
2: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
2: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
2: भारती तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
2: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
2: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
2: रात के 10 बज चुके हैं।
3: अरे
1: नागमणि तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
3: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
3: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
2: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
3: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आई डॉक्टर अम्मा
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरतजात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए। ये देख, सामने नाला बन।

0: भी ये कहा कि तुम ये विषय क्यों ले रही हो, सब खुश थे
1: जी
0: इस चीज को लेकर।
1: तो ये तो स्कूल के समय की बात हो गई, फिर जब आगे की पढ़ाई की बात आती है तो उस समय उसी विषय
2: एक से डेढ़ साल लगभग आप यही काम करते रहे,
3: यही काम करते
2: ये संघर्ष जो
3: अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
2: हाँ।
3: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा, तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
2: अच्छा।
3: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
2: इतना
3: नहीं
2: था, पैसा मिल जाता
3: इतना
2: था,
3: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
2: अच्छा।
3: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया
2: जी, सपने देखने जैसा,
3: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
2: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
3: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
2: बताइए।
3: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी
0: नहीं
1: थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
1: लगभग
0: 200-250
1: गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी बिट्टी गुम सुनाए क्या।

0: बिल्कुल
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश
0: भी
1: हो
0: एक
1: जाए।
0: ऊर्जा आ जाती थी, एक
1: हाँ, लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे

0: थे, एक
1: हाँ लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा,
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन
1: नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता
0: प्रति,
1: है,
0: ना इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है,
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे, क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे, बातचीत में वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
0: जी
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
0: जी खैर, ये तो
1: कहीं ना
0: आप
1: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा
1: उनके जैसा, हो सकता है,
0: जी।
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
1: जी
0: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
1: जी
0: आपने उनको अपना उस्ताद माना हजरत
1: जी जी
0: साहब
1: जी,
0: को।
1: जी बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
1: जी
0: है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
0: जी
1: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं नहीं आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंदराज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है। तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी, तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियां बीबी रहते ही थे वहां पे। तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
0: अच्छा।
1: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया।

0: और मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ, तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो
1: शानदार
0: तो
1: और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना।
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े?
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था।

0: वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना
1: करते
0: चाहिए
1: हैं
0: वो सब मैंने
1: वो
0: वहीं
1: तो
0: से
1: खरसन
0: सीखा
1: वाला थे कि
0: बहुत बहुत।
1: शुरुआत।
0: और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
0: वो फिल्म थी गोरी,
1: गोरी।
0: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था,
1: अच्छा,
0: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी।
0: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोर दा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफी हो चुका था, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूं। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहां नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
0: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूं, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा,
1: अरे क्या बात
0: और
1: है।
0: उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान
0: जी जी
1: संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को,
0: जी
1: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
0: नहीं,
1: था?
0: मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था। और

धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां के राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्नसेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।

0: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
1: आपने याद किया सम्राट विजयश्रवा?
0: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी? तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
1: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
0: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापूर्ण भावना जीवन में घुलकर कहती है, सब व्यर्थ है, मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं। मेरी दहकती हुई वक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
1: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
0: बिना मेरी आज्ञा के?
1: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है। सम्राट,
0: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता। भुवन मोहिनी,
1: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी। सम्राट, आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम।
0: भुवन मोहिनी।

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आ स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्रागी, इसमें परेशान मत हो।
1: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं नहीं, चुप हो जा बेटे।
0: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
1: अच्छा?
0: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
1: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूँ सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
0: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम्हें, तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
1: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए, दो ना बहन।
1: हाँ हाँ, ये लो जा, तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
0: साम्रागी,
2: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरे प्रति कृतज्ञ नहीं है।
1: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? आ चल, तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूँ सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूँ। आ आ आ चल।
0: क्षमा मांग सकता हूँ तुमसे भुवन मोहिनी?
2: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूँ, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
0: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
2: नारी सेवा के काम में लग गई हूँ।
0: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
2: मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
0: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
2: क्यों?
0: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति गौंती है, तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
2: तो इसमें बुराई क्या है मेरे सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
1: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र है।
0: चंद्रहासिनी!
2: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष

0: कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी। जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा? असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारे प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़ेले।
1: यही यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
2: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणयदान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
1: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असहनीय होंगी उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारी दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लादकर कह रहे हैं यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
2: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
1: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने?
0: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर।
2: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासिनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध आदंडनीय। अस्तु मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
0: सम्राट,
2: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना? यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था, कोलाहल से दूर एकांत में। और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो। एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो, जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी,

अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहास ने कभी भी सौंदर्योन्माद के विषय

0: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
1: नहीं, किंतु
0: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
2: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट, भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बाला सी मचल जो रही है।
0: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था, वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट,
0: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी कहां जा रही? रुक जाओ भुवन मोहिनी।

0: हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगो, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। असीम वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था, वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही। किंतु आज आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन। पतझड़ लाती, काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं, या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।
1: कहां है साम्राज्ञी? साम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें साम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
2: सम्राट,
1: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम, जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
2: नहीं,
1: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
2: नहीं सम्राट,
1: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
2: परंतु सम्राट,
1: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना, तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
2: नहीं सम्राट,
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां एपिसोड। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहां जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मूल भाव न कोई नापतौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहां गुम है। ढूंढूं कहां उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

0: हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे
1: चैनल है 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले राम। तो नीलम बहन, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं सविता शर्मा से ये लोकगीत।

0: सुनीता पांचाल द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।
1: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ

0: तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
1: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आइए आनंद लेते हैं कुछ सुमधुर भजनों का।

श्रोताओं, ये बड़ा ही प्यारा भजन आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: आपके विश्वास के 90 वर्ष, आपके साथ के 90 वर्ष। सूचना, ज्ञान और मनोरंजन के 90 वर्ष। जी हां साथियों, आपकी सेवा में तत्पर आकाशवाणी के 90 वर्ष। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ और करते रहिए स्वस्थ मनोरंजन।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये बड़ा ही प्यारा और सुमधुर भजन आप सुन रहे थे लखवीर सिंह लखा की आवाज में। आइए इन्हीं के स्वर में एक और भक्ति रचना सुनते हैं।

हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 6 बजे हम आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ लोकप्रिय भजन। तो आइए आज के सुगम संगीत में अब आप और हम सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में भगवान शिव की ये बड़ी ही मधुर और प्यारी आरती।

श्रोताओं, इसी आरती के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। आइए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

सनम रे, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मिठू, अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला को। इस गीत को संगीत दिया था और गीत भी लिखा था मिठू ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है रंग दे बसंती फिल्म से। इस गीत को गाया है मधुश्री और नरेश अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत है AR रहमान का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है राजनीति फिल्म से। इसे गाया है आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकोलसन और शशि ने। समीर का गीत है और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ओमकारा फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज की आवाज में। गीत के वो लिखे हैं गुलजार ने और संगीत बनाया है विशाल भारद्वाज ने।

0: श्रोता अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से 1 दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।

0: देविका सिहा, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड
2: कार्यक्रम ग्राम सभा शाम को 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रायोजक होंगे विकास दर्शन। रात 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर सुनिए पॉडकास्ट सीरीज में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका एपिसोड नंबर 7। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:35 पर। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात्रि 10 होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय से संतूर वादन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सुहावने मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 7:20 पर हम लेकर आते हैं हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:15 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत, कलाकार होंगे अर्जुन सिंह ध्रुवे और साथी। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधी अच्छी सुरहान। 10 वक्त होगा जिले की चिट्ठी का, सामुदायिक गान शिक्षण पाठ सुनिए 10:05 पर। और 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। कल सुबह 11 सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। दिन में 12 सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम संग्रहालय से आप सुन सकेंगे दोपहर में 12:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी का 10वां एपिसोड। महिला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 1:00, प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के सौजन्य से होंगे। दोपहर 2 आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। बच्चों का कार्यक्रम सुनिए दोपहर 2:30 पर, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। शाम 5:02 पर सुनिए युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। शाम 5:33 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का और शाम 6 पुनः आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

शाम 6:30 पर आकाशवाणी से सीधा रिले होगा आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 10:45 पर सुनेगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह

0: हम पहुंचाएंगे, हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले सातों स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य

0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 173,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 158,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन

ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अब कुछ ही पलों में सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहनन खां निहारिका सक्सेना की राम राम। भैया हरों, हम आपसे चर्चा करें पर पहले अपन सुन लेते हैं एक जरूरी संदेश।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रामेश्वर मीना, जिला टीकाकरण अधिकारी गुना, आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आगामी 28 जून रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाई जा रही है। अतः आप अपने 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र पर जरूर पिलाएं। पूरे गुने जिले भर में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पल्स पोलियो बूथ की स्थापना की गई है। वहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी। आप अपने बच्चों को जरूर वहां ले जाएं और पोलियो की दवा पिलवाएं। इससे आपके बच्चे को जिंदगी भर के लिए पोलियो से प्रतिरक्षण एवं बचाव सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।
0: सो भैया बहनों, हर को जा चाहत है कि अपन आगे बढ़े, अपनो विकास होए, अपने जीवन में अपन प्रगति करवो चाहत है और बाकी जिते को काम होते हैं, मतलब अपन जिते को काम करत हैं, जई उद्देश्य को पावे के काज करत हैं। अब जब नो हम विकास की बात करें आपसे, तो तब नो बा में कौन कौन सो विकास, तो बा में आत है अपनो शारीरिक विकास, है नहीं। शारीरिक विकास के काज अपन योगा करत हैं, तनक कछु न कछु व्यायाम अपन करत ही हैं। बाके बाद में आत है मानसिक विकास है, और फिर बाके बाद में आत है आर्थिक विकास। तो जई सारे विकास तो होते हैं जिनके काज अपन प्रतिदिन कछु न कछु काम करत हैं। हर को चाहत है कि बस स्वस्थ रहे, अच्छे पैसे कमाए, काय से कि शरीर अच्छे रहते हैं तो अपन काम अच्छे से कर सकते हैं। पहलो धन तो हमारो स्वास्थ्य ही होता है, बाके बाद में हमारी जितने की आवश्यकताएं होते हैं बिनकी पूर्ति करवे के काज है, हमें पैसे की जरूरत होता है, जो हमें धन कमावे की आवश्यकता होता है। और भैया, जब हम अपनो विकास करवे की ओर प्रयास करेंगे, तभी तो अपने देश को विकास हो सकेगो। काय से कि अपने देश की जोनो अर्थव्यवस्था चलत है और जोनो कछु काम काज होते हैं, बस अब अपन से ही तो होते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होएगी, अपने पास अच्छो धन होएगो, तो जाहिर सी बात है कि अपनो देश भी अच्छो विकास करेगो, हैं। बा में अच्छी फैक्ट्री वगैरह सब लग सकेंगी और अपने देश में, और जितने को सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जा सब अच्छे से हो सकेगी। सो अब जब अपन अपने देश की बात कर रहे हैं, सो अपनो देश तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कृषि प्रधान है। अपने तने एक बड़ी आबादी

उत्पन्न हुए हैं वह गामन में निवास करत है और लोगन को जो मुख्य व्यवसाय है वह खेती बाड़ी है। पर अपने देश की विडंबना जा है कि हमरे तने जौन गांव है वे गांव इतेक विकसित नहीं है जितेक इन्हें होने चाहिए। विकास के जौन जौन लक्ष्य बिन गांवन को प्राप्त करने चाहिए वे लक्ष्य प्राप्त करवे से अपने गांव बहुत दूर हैं। को जगह को विकास होवे को मतलब का होता है तो बाको विकास को मतलब तो जा है कि पक्की सड़कें होएं, 24 घंटा बिजली मिले, बेते पानी की कोई समस्या नहीं हो, अच्छो भरपूर पानी होए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होए, हॉस्पिटल होए, प्राथमिक चिकित्सालय होए, बाके अलावा शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होए हैं। और जोन खेतीबाड़ी होते गांव में सुबह खेतीबाड़ी करवे के काज है आधुनिक तकनीक को उपयोग करो जाए, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, माने कि कचरा निपटान हमें कैसे करने हैं, बाकी एक समुचित व्यवस्था होने चाहिए, इतने एक होते हैं गंदगी नहीं फैली होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब गंदगी नहीं होएगी तो बीमारी सो कम होएगी और जब बीमारी नहीं होएगी शरीर अच्छे रहेंगे तो कार्यबल बढ़त है, जब कार्यबल अच्छो होएगो आदमी काम करेगो तो काम करवे से पैसा आत है। अपन अपने देश में नहीं बाकी दूसरे देशन में सो अपनी चीजों को बेच सकत है, सुबह से विदेशी पैसा आगो और जब विदेशी पैसा आगो तो बहुत मतलब जाहिर सी बात है कि अपने देश को विकास होएगो, अपन और अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे अपने देश में, जौन यातायात की सुविधाएं बिन बिन में विकास हो सकेगो, स्कूल की व्यवस्था और अच्छी होएंगी और गामन में सो और अच्छी अच्छी सुविधा हो सकेंगी। तो कतना अपन जब देखो कि का अपने गांव ऐसे हैं तो बहुत मतलब कछु जगह ऐसी होएंगी जितने गांव इतने अच्छे हों वैसे गांवन में इतने व्यवस्था नहीं हों। भैया होरन जो न अपने महात्मा गांधी हते नहीं बिन्ने जब बात कही हती कि भारत की आत्मा गांवन में बसत है। अब अपन देख लो कि अपने जो शरीर है वह में अपनी आत्मा अच्छी पुष्ट होएगी, जैसे अपन एक अपन आध्यात्मिक विकास की सो बात करें, सो जब अपन आध्यात्मिक विकास अपनो अच्छो करें अपनी आत्मा पुष्ट होएगी अपनो मनोबल बढ़ेगो, तब मनोबल ऐसो होता है कि अपनी शक्ति को दुगनो चौगनो कर देते है नहीं। तो जो भारत को मनोबल है वह गामन में बसत है, सो जब नो भारत के गामन को विकास नहीं होएगो नहीं तब नो भारत को सर्वांगीण विकास कैसे हो सकेगो। अब अपने गामन के लोग काम को खोजवे के काजन कैसे के बिना बिन की खेती बाड़ी अच्छी नहीं चल पाते, सो बे शहरन की तने जा रहे हैं, बिना लग रही कि शहरन में जाके हम तनक अच्छो पैसा कमांगे हैं। तो तनक सोचो कि अपने अन्नदाता जब अपनो काम छोड़ देंगे सो बाकी लोग का खावेंगे पिएंगे कैसे कि रुपया पैसा तो खाओ नहीं जा सके, खावे के काजन तो अन्न ही चाहिए और अन्न उगत है खेतन में हैं। सो भैया सरकार सो जा सब बात ने समझते है और बा प्रयास कर रही है कि अपने गांव को विकास होए, कछु ना कछु योजनाएं चला रही है जैसे कि गांव में सुविधाएं होए, पर तनक अपन सो कछु अपने स्तर पे प्रयास कर सकते है। सो अपन का कर सकते है अपन भैया औरन जो सबसे बढ़िया बात है सबसे आसान बात है कि अपन अपने तने साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था कर सकते है नहीं। जब अपने गांव साफ होंगे अपन बिन में अच्छे तनक जोन अपनी घर हैं बिने तो तनक अपन अच्छे से बनाए अच्छे से अपनो रहन सहन करें। कई सारे गांवन तो ऐसे होंगे कि जिनमें तो बे पर्यटन से बिन की कमाई होते है, लोग बाग गांवन को देख भी आते कैसे कि शहर में इतनी ज्यादा भाग दौड़ेगी कि लोग बाग हैं सो त्रस्त हो जाते हैं, सिर्फ शांति के काज है ऐसी जगह कचु कचु ढूंढट है। तो जो उन लोग ऐसे घूमबे फिरवे आते हैं तो जब लोग बाग घूमबे फिरवे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बिन के संगे पैसा सो आएगो है, कचु कचु काम और सो चल सकेंगे गांवन में। सो अपन अपने गांव में अच्छी व्यवस्था बना के रखें और अपने जो बच्चा हुए तो बा में बिना भेदभाव के बिना पढ़वे के काज में भेजें, अपन जे नहीं सोचें कि बिटिया है सुना पढ़ांगे बेटा है सो अपन जे ते ते पढ़ांगे, ऐसो नहीं करने, अपने को बेटा बिटिया दोनों के काज है अच्छे से पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। और बाकी अलावा जो उन गांव की महिलाएं हैं बे सो स्व सहायता समूह बना के काम कर सकते हैं, महिलाएं कच

0: कछु छोटे उद्योग सु लगा सकते हैं। काहे से बिन में बहुत हुनर होए, बे सिलाई कढ़ाई अच्छे कर सके हैं तो जो उन सिलाई को काम है तो तना का थैले मैले ऐसे कछु चीजें बना के बाजार में बेच सकते हैं। गोबर से सो कई सारी चीजें बन सकते हैं जिनको बाजार में बहुत अच्छी उपयोगिता है। अचार पापड़ को काम कर सकते हैं। सो ऐसे तनक तो छोटे मोटे उद्योग लगा के हमारी महिलाएं जो हैं गांव की वे सब इकट्ठी होके ऐसी कछु काम कर सकते हैं। सो खेती किसानी में सरकारी योजनाओं को लाभ सो ले सकते हैं भैया औरन जैविक खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सो भैया ऐसे ही कछु कछु छोटे छोटे काम जोन हुए अपने गांवन को विकास की ओर ले जा सकते हैं। काय से के भैया गांव गांव के विकास से ही राष्ट्र को विकास है।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रामेश्वर मीना, जिला टीकाकरण अधिकारी गुना, आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आगामी 28 जून रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत पल्स पोलियो की दो बूंद पिलाई जा रही है। अतः आप अपने 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दो बूंद अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र पर जरूर पिलाएं। पूरे गुने जिले भर में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पल्स पोलियो बूथ की स्थापना की गई है। वहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दो बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी। आप अपने बच्चों को जरूर वहां ले जाएं और पोलियो की दवा पिलवाएं। इससे आपके बच्चे को जिंदगी भर के लिए पोलियो से प्रतिरक्षण एवं बचाव सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।
0: जा कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भैया औरन, जोन सरकार है अपनी, तो बाको तो जय प्रयास रहते कि गांव को विकास होए और किसान भैया के लाने खेती को लाभ को धंधा बनाया जा सके। सो भैया औरन, हमने अभी कछु देर पहले तो हम का कर सकते हैं, हमने अब्बा बात करी थी, अब सरकार जोन है बा किसान भैया होरन के काजन का कर रही है, जैसे कि किसान भैया उनको विकास होए और गांव को विकास होए हैं। सो बा कछु कछु योजनाएं चला रही है, जैसे कि किसान भैया होरन है कछु राहत मिल सके और बे जो कछु बिन के खेत में बोए सुबह को उत्पादन बढ़ाओ जा सके हैं। सो केंद्र और राज्य सरकारें कछु योजनाएं चला रही हैं जिनको उद्देश्य जाए कि किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, बीमा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके, ताकि बे मौसम में जो कछु अनिश्चितताएं हों, कैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या मौसम की आत है, कैसे कृषि जोन है वो मौसम पे निर्भर करत है। सो मौसम के मारे बहुत सारी परेशानी आ जाते हैं, तो इतने मतलब अनिश्चितताओं के बावजूद भी अपन अच्छो उत्पादन ले सके। सो कछु योजनाओं की चर्चा हम आपसे करत है। देखो, पहली तो है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जा योजना में का होत है कि जो हम किसान भैया बहन हैं बिनके काजे हर साल 6,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में बिने दई जाते हैं, और जे जो 6,000 रुपए दई जाते हैं वे तीन चार किस्तन में दई जाते हैं, जो कि 2,000 की किस्तें हों। सो हर 4 महीना में 2,000 की किस्तें हो के तीन किस्तन में ऐसे

रुपया दे जाते हैं और जन जो रुपया होए बस सीधे खाते में ट्रांसफर करी जाती जा राशि। अब जा राशि आपके काज में बहुत ही काम की हो सकत है, आप जैसे बीज ले सकते हो और अपनी और कछु जो खेती किसानी में जरूरत है उनकी आप पूर्ति कर सकते हो। अब बाकी बाद में एक बहुत ही जो है अच्छी योजना है जज्जा के बारे में हम हमेशा ही आपसे कहते रहते हैं, वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जा योजना में कहा है कि जो प्राकृतिक आपदा से फसल को कछु नुकसान हो जाते हैं तो बाकी भरपाई जा योजना में हो जाते हैं। अब अपन को तनक प्रीमियम भरने पड़े थे पर इतने ज्यादा प्रीमियम नहीं हुए कि आप से सहन नहीं हो सके, तो माने कि कम प्रीमियम में अच्छी बीमा सुरक्षा आपको मिल जाता है। अब जैसे कछु कभी भारी बारिश हो गई, सूखो पड़ गयो के फिर कछु कीट को हमला हो गयो, तो ऐसी स्थिति में जो आर्थिक नुकसान है बाद से आपको बचा हो जाएगा। जय योजना को यदि आप लाभ ले लो तो जय योजना आपके काज में सुरक्षा कवच की घाय मददगार हो सकता है। अब बाकी बाद में देखो अपने को सिंचाई शुरू करनी है, सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सो आपके काज है सरकार ने चला रखी है। जय योजना को का उद्देश्य है कि हर खेत को पानी मिलने चाहिए। अब जो कछु कछु तकनीक है सिंचाई की जैसे कि ड्रिप विधि से सिंचाई होता है, स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई होता है, तो जे आधुनिक तकनीकें अपने खेत में लगवावे के काज है सरकार सब्सिडी देते है, तो आपको जो है आर्थिक राहत मिल जाते है और सिंचाई भी आपके खेतन में बहुत अच्छे से हो सकता है। बाकी अलावा एक और योजना की बात करें तो वह है बीज वितरण और मिनी कीट योजना। जब योजना में का होते है कि जो बीज होते है मिनी किट एक तैयार करके रखो जाते है बीजन के कारण, सो जो बीज हैं वो आपको रियायती दरों पे उपलब्ध हो सकते है और कछु बीज तो ऐसे हो जो आपको मुफ्त में सो मिल सकते है। अब बाकी अलावा एक और योजना है भैया होरन, वह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। जय योजना के तहत आपके जमीन आपके खेतन की जो जमीन है ना बाकी मिट्टी की जांच हो जाएगी, आपको अपने खेत की मिट्टी की रिपोर्ट मिल जाएगी, सो आप बा में सही मात्रा में खाद को उपयोग कर सकोगे, जैसे आपकी लागत सो बचेगी और जितने खाद की आपकी फसल को आवश्यकता होते खाद आप बा में डाल सकोगे, सो आपको उत्पादन सो अच्छा होगा। अब जाके अलावा एक और योजना हम आप हैं बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना। जय योजना के तहत का करो जात है कि जो उन किसान भैया होरन हैं बिना प्रोत्साहित करो जात है कि भी जैविक खेती को अपनाए, कैसे कि रासायनिक खेती करवे में खर्चा बहुत आते है, अपने खेत की मिट्टी खराब होते है नहीं, और जैविक खेती जो अपनी परंपरागत खेती है बासे फसल बहुत अच्छी होएगी, जो फसल होते है बा में पौष्टिकता होगी। कैसे अपन देख रहे हैं कि अपने देश में कुपोषण की समस्या कछु बढ़त जा रही है, बच्चन में उत्तुक मानसिक विकास नहीं हो रहा, उत्तुक शारीरिक विकास नहीं हो रहा जितो पहले वो करत तो है। अपने जो दादा दादी हुए बिनके टेम पे जो बच्चा अच्छो बढ़त तो अब बच्चा नहीं बढ़े, आए दिन बीमार रहते, बाकू एक कारण जैसे हुए जो अपन रासायनिक खेती करत है तो बस जो फसल होए जो अन्न होए दाल होए बिनकी पौष्टिकता कम हो जाते है। सो भैया होरन अपन को जैविक खेती अपनाने चाहिए जिससे कि अपन अपने जो देश के बच्चा हैं बिनकी बढ़ोतरी में सो अपनो योगदान अपन दे सके हैं। सो किसान भाइयों को जय योजना में का करत है बिनको समूह बना लेते हैं, समूह के रूप में बिने जोड़ लेते हैं जैसे कि भी सामूहिक रूप से जैविक उत्पादन कर सके और बिनकी लागत कम कर सके। अब जाके अलावा एक और योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना। जय योजना में किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनरी उपलब्ध कराई जाते है जैसे कि खेती को आसान तेज और अधिक उत्पादक बनाओ जा सके, और जय योजना में किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के काज सब्सिडी से सरकार देते है। सो भैया ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जाके अलावा एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना सो है, बा योजना में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाते है, आपको जो है ऋण उपलब्ध हो जाते है बा में आपको कम ब्याज दर देने पड़ेगी।

0: आप जैसे जो ना आपको किसान क्रेडिट कार्ड हुए वैसे आप 5 लाख तक को ऋण ले सकते हो, और 1,60,000 से 2 लाख तक को जो ना आप ऋण लो, बाकी काजे आपको गारंटी जमा करवे की सो जरूरत नहीं होगी। सो भैया किसान क्रेडिट कार्ड को योजना को लाभ भी आप ले सकते हो। जाके अलावा एक योजना की और बात करें, ई नाम योजना। ई नाम योजना ऐसी योजना है भैया औरन, जा तो भाई इतने एक सारी योजना हमने आप बताई कि आपको कैसे बीज मिल जाएगा रियायती दरन पे, आपकी खेत की मिट्टी के काजे कौन सी योजना है, सिंचाई के काजे कौन सी योजना है। जब अब जब अपन अपना उत्पादन होएगा हो है, अपने पास फसल आ गई, तो अपने को मंडी से तो चाहिए नहीं कि अपन अच्छे से बेच पाए बाय। जय के मारे एक ई नाम योजना चलाई गई है। सो सरकार ने क्या करो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देश भर की कृषि मंडियन को जोड़ दो है, जैसे कि आप अपनी उपज को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा तरीके से बेहतर दाम पे बेच सकते हो। आप जोन है जोन जा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने को रजिस्टर्ड मंडी है बिन पे आप ऑनलाइन बिकावली कर सकते हो। तो जोन बिचौलियाँ हैं जोन कि आपको मुनाफा खा जाते हैं, सुबह बिचौली से आपकी रक्षा हो जाएगी और आपको अपनी फसल को अच्छे दाम मिल जाएगा। सो भैया आप जिन योजना को लाभ लेके आप अपनी जो है कृषि है व कृषि की लागत को कम कर सकते हो और अपनी खेती के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हो। अब हम आप हैं सुनवा रहे हैं भैया होरन ग्राम खास खेड़ा के उन्नतशील कृषक मोहर सिंह प्रजापति से खेती किसानी विषय पर बातचीत, और जब बातचीत अपन सुनेंगे बासे पहले एक तनक जरूरी संदेश सुन लेते हैं।
1: एक मिनट सर, ओके कर दें, बोल लेंगे वो तो आप।
2: आकाशवाणी गुना के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं किशोर कनियाल, कलेक्टर गुना। आज मैं आप सबके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि गुना में गुलाबों की खेती, विशेष रूप से जो पोली हाउस वाले हैं, उनका काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और काफ़ी एरिया बढ़ रहा है। अभी हमने 10 जून को भी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप रखी थी, उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, और जो डिफरेंट हमारे वेंडर्स थे, जिन लोगों को हमारे जो बैंकर्स हैं जो लोन देते हैं, वो भी उपस्थित थे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अधिकारी आए थे, स्टेट से अधिकारी आए थे। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी वर्कशॉप थी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और स्टेट के जो हमारी पॉलिसीज़ है उसका लाभ लें। अधिकतम 3 एकड़ तक, 1 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसमें देता है। और जिस प्रकार से हमारा गुना का करंट में स्टेटस है, लगभग 50 एकड़ पर अभी खेती बाड़ी हो रही है पोली हाउस गुलाबों की, और हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगभग 100 एकड़ इसका और इजाफा करेंगे। चूंकि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें लगभग लगभग 15 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट वो लोग एक साल में 1 एकड़ भूमि से कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है। तो हम लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि आप जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उससे हटकर भी आप इस प्रकार की खेती बाड़ी करेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होंगे। इसी प्रकार हमने एक दूसरा जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है, थाइपिंग अमरूदों की खेती, उसको भी हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग 1 लाख पौधे अपने गुना जिले में लगाए हैं। 50,000 तो हमने SHG ग्रुप के माध्यम से लगाए हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे कुछ किसान बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं और उनकी 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम एक एक एकड़ में एक साल में हो रही है। आप सोचिए, बहुत से किसान ये कहते हैं कि वो एक एकड़ में 50,000 रुपए का ही अधिकतम लाभ लेते हैं। बहुत रेयरली लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो अब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल गुना जिले में उन्हीं के बीच में जो हमारे जागृत किसान हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से किसानों ने अभी सब्जी भाजी बोना शुरू कर दिया है अलग टाइप की, उस पर भी उनका 5 लाख रुपए तक का इनकम एक साल में 1 एकड़ में हो रहा है। कुछ लोगों ने जो हमारा सामान्य गुलाब होता है, ओपन खेती जो गुलाबों की होती है, वो भी कर रहे हैं, उसमें भी 5 से 6 लाख रुपए की 1 एकड़ में एक वर्ष में इनकम हो रही है। तो हम सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने खेती के पैटर्न में परिवर्तन करें, जहां आपको अभी

0: एक एकड़ में एवरेज 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहीं पर आपका ऑप्शन है कि आप 5 लाख का भी ऑप्शन कर सकते हैं, 10 लाख का भी और 15 लाख का भी। आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी और ये सभी के लिए अच्छा है। और इससे बढ़कर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। गुना जिले में इस समय लगभग 4000 किसान 4000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारे 20 BRC सेंटर्स भी हैं, इसके अलावा 30 जगह पर हमारे कृषि सखी भी हैं। प्रत्येक सेंटर में 2-2 सखियां होती हैं और वो सब प्राकृतिक खेती के बारे में ही जागृत लोगों को करती हैं। आजकल हम लोगों ने एक नया थीम दिया है, जो खाओ वही उगाओ। तो आप सोचिए, आप यदि वही उगाएंगे जिसको आप खाते हो, आप ये भी तो ध्यान रख रहे हो ना, जो आप खा रहे हो वही दूसरा भी व्यक्ति भी खाता है। तो ऐसी चीज उगाओ जो आपके लिए भी अच्छा हो, हेल्दी हो। इसी प्रकार हम बार बार एक चीज बोलते हैं लोगों को, हर खेत में मेड़ और हर मेड़ में पेड़। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में खेतों के बीच में जो मेड़ होती थी उसमें बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पर जैसे जैसे परिवारों में विभाजन हुआ, खेती बाड़ी का विभाजन हुआ, वो मेड़ छोटी होती चली गई और उसके बीच में से जो पेड़ थे वो कटते चले गए। समय आ गया है हम फिर से उस दिशा में आगे बढ़े और मेड़ में, चाहे वो नीम का हो चाहे वो बरगद का हो, कई सारे पेड़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, छायादार भी रहेंगे, उससे जो उसकी मिट्टी उसके उपजाऊपन भी रहता है।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की राम राम। भैया बहनों, खेती किसानी जोखिमों से भरा काम होता है। कभी मौसम की मार तो कभी कीट प्रकोप जैसी समस्याओं का खतरा तो इस धंधे पे हमेशा बना ही रहता है, पर फिर भी यदि हम सजग रहकर सावधानी से और समझदारी से काम करें तो खेती किसानी के इन जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। हम ये तो नहीं कहते कि बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है, लेकिन हाँ, जो कुछ भी नुकसान हो सकता हो उसमें थोड़ी अपन कमी कर सकते हैं और खेती बाड़ी को लाभ का धंधा बना सकते हैं। अब जो अपनी खेती होती है तो उसमें जो किसान भाई अपने काम कर रहे हैं तो उनके अनुभव, उनकी राय, उनकी सलाह इस काम में बहुत मदद दे सकती हैं। तो आज हमसे अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रगतिशील किसान भाई, मोहर सिंह प्रजापति, जो कि ग्राम खासखेड़ा के निवासी हैं। तो मोहर सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: तो आप अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
2: अभी तो क्या, अपन ने खेतों की जुताई कर दी, तो दो बार खराब दे दी और पानी बरसेगा ना, इसके बाद पानी लेट हो रहा है इस बार।
1: हाँ, इस बार पानी में देर हो गई,
2: थोड़ा मानसून लेट आए इस बार, तो हो सकता है जल्दी एक दो दिन बारिश हो जाते तो पछता देगा, मक्का बो देंगे अपन।
1: अच्छा, मक्का की बुआई लेंगे,
2: मक्का की खेती करेंगे।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो मक्का के लिए आपने कौन से बीज का चुनाव किया?
2: मक्का के कई प्रकार के बीज आते हैं, 10-5-7 प्रकार के बीज आते हैं, कोई 51-06 आती है, कोई 70-74 आती है, मतलब कई प्रकार की मक्का आती है ऐसी। तो अपन ने क्या, 51-06 जो ज्यादा अच्छी निकलती है।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो अब जैसे इस बार पानी देर हो गई, पानी अभी तक नहीं बरसा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा
2: फसल? अभी तो क्या, 5-10 जुलाई तक पानी बरस जाएगा तो मक्का तो बोएंगे अभी, और 15 जुलाई के बाद पानी बरसेगा तो फिर मक्का नहीं होगा।
1: अच्छा
2: जी,
1: फिर नहीं हो पाएगा,
2: फिर मक्का नहीं हो पाएगा, फिर पानी ज्यादा बरसेगा तो नमी हो जाएगी ज्यादा, तो उसको क्या, अपन पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद ये बोते हैं उसको, तो थोड़े जमीन के उपजाई रहती है, जमीन के थोड़ी गर्मी रहती है जमीन में, तो गर्मी के कारण क्या है बीज अच्छा निकलता है, ऊपर अच्छा निकल जाता है, तो उसमें अच्छी फसल मतलब बुआई हो जाती है उसमें। और जो ज्यादा पानी बरस गया और इसके बाद 15 जुलाई के बाद बरसेगा तो फिर जमीन ठंडी हो जाती है, 15-20 जुलाई के बाद फिर उसका लेट हो जाती है, लेट हो जाएगी तो फिर मक्का नहीं बोएंगे आदमी।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो फिर आप क्या उसमें व्यवस्था करेंगे, फिर क्या बुआई करेंगे आपके खेत?
2: फिर क्या, जैसे अपन उर्द बो सकते हैं, सोयाबीन बो सकते हैं फिर अपन।
1: अच्छा,
2: तो एक दो फसल और ले सकते हैं, फिर बाकी मक्का का फसल तो सीजन चला जाएगा मक्का का।
1: अच्छा अच्छा
2: जी, और
1: तो मक्का की देखभाल कैसे करनी चाहिए आप?
2: मक्का ही का अपन ने बोध पछता देगा, खेत बोल लगा के बो दिया अपन ने, बोने के बाद में फिर 15-25 दिन बाद उसमें दवाई डालने,
1: 25 दिन बाद दवाई
2: डालने, पूरा कचरा होता है तो फिर

0: दवाई मर जाता है।
1: अच्छा, कूड़े कचरे के लिए पहले से भी कुछ व्यवस्था आपने खेत में करी?
0: अब तो क्या है, तो आजकल टेक्नोलॉजी दवाई चल गई, दवाइयों सब मर जाते हैं। पहले आदमी से गुड़ाई करवाते थे, आदमी दे जाते थे पहले।
1: अच्छा,
0: गुड़ाई उड़ाई तो आजकल बंद हो गई है, कोई करवाता ही नहीं है। पहले गए तो मशीनें भी चली थी, साइकिल वाले मतलब उनसे गुड़ाई होती थी, तो मशीनें तो बंद हो गई हैं आजकल, साइकिलें ही बंद हो गई हैं। तो दवाइयों से कचरा मर जाता है, कीटनाशक मर जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और क्या।
1: तो मक्के की फसल में सिंचाई कितनी लगेंगी?
0: मक्के कम से कम एक हफ्ता में एक पानी तो चाहिए उसके।
1: अच्छा,
0: एक हफ्ता में हर हफ्ते में पानी बरसना चाहिए। और थोड़ा ज्यादा ही अगर नमी ज्यादा पानी बरसता रहा मक्का गल जाएगी। थोड़े कुछ को धूप भी चाहिए, धूप निकलती है और अच्छा है, मक्का की फसल ताकत हो जाती है।
1: अच्छा, आप अपने पूरे खेत में अकेले मक्का ही लगाएंगे या कुछ और भी लेने का विचार किया?
0: नहीं, अभी 2 साल से मक्के बक्का लगा रहे हैं पूरे खेतों में।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपके गांव में सब लोग क्या लेते हैं?
0: सब लोग लगभग मक्का ही मक्का ले रहे हैं अभी 2 साल से।
1: अच्छा, 2 साल मतलब अच्छी आमदनी दे रही है फसल।
0: फसल मक्का ही फसल अच्छी आमदनी देती है।
1: उसमें कीट प्रकोप वगैरह क्या देखने में आ जाते हैं?
0: कीट प्रकोप क्या, कोई कोई पीली पड़ जाती है मक्का।
1: अच्छा,
0: अगर कुछ उसमें रोग लग रहा है तो पीली बगह पड़ जाती है, तो उसमें अपन खाद वगैरह डाल देते हैं और फोटो खींच के अपन उसको बता दो जान के दवाई वाले कीटनाशक वाले।
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ, तो वो दवाई दे देते हैं, उससे वो हरी हो जाती है। बिल्ली लगाई तो बिल्ली को पत्ते कट जाते हैं, उसके पत्ते पता चल जाता है किसमें बिल्ली लग रही है, बिल्ली दवाई डाल देते हैं। और क्या,
1: तो लगभग और फसल के तुलना में देखी जाए तो मक्का में लागत कितनी लग जाती है, ज्यादा लगती है या?
0: लगभग लागत तो उसमें लगती है, बीज बहुत महंगा आता है भाई मक्के का।
1: अच्छा,
0: और बीज महंगा आता है और लगभग आधी लागत लग जाती है।
1: अच्छा
0: हाँ, मगर चना मतलब सोयाबीन से और उससे ज़्यादा लागत है। सोयाबीन और अपन और तो बहुत है, उनमें कम लागत आती है, ज़्यादा लागत आती है मक्के में।
1: तो मुनाफा भी लेकिन उनसे ज़्यादा दे जाती है।
0: हाँ, जैसे एवरेज अच्छा निकल जाता है, बीघा में 15 क्विंटल 12 क्विंटल निकल जाती है तो अच्छा एवरेज लग जाता है इसका।
1: अच्छा,
0: कोई कोई 18 क्विंटल निकल जाती है, किसी किसी की अच्छी मक्का उगती है तो मक्का में किसानों को बहुत प्रॉफिट है।
1: अच्छा
0: जी।
1: अच्छा मोहर सिंह भाई, ये तो भाई अपने मक्के की बात, फसल की बात। अब अपन ने पशु वगैरह भी आपने पाले होंगे?
0: हाँ, पशु है ना, गई
1: है। अब जो मौसम बदल रहा है अभी ना, तो मतलब बरसात भी देर हो गई वैसे तो, अब बरसात का मौसम शुरू होगा, तो अब इसमें क्या पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए?
0: कुछ नहीं, अभी तो क्या गर्मियों में तो ऐसे चल रहे थे लोग, पशु ऐसे खुले चल रहे थे, मतलब टगर में चले जाते थे वे, तो घर कोई लगता था ना वही पशु घर आता था, बाकी तो वो सब टगर में ही रहते थे, खेतों पर ही रहते थे। और अब जो बारिश आने वाली है तो बारिश में क्या, अपन उनको घर में बांध देंगे, घर में बांध देंगे तो घर पे चारों चराएंगे और अच्छे से देखभाल करेंगे।
1: इस इन दिनों बरसात के दिनों में खाने पीने में क्या परिवर्तन करना चाहिए पशुओं के, जिससे वो सेहतमंद बने रहे?
0: खाने पीने में क्या, अपन सानी में लग रखते हैं, पुष्पलाग रख देते हैं, हरा हरा चारा जाएगा, हरा चारे के कटिया कर करके उसको काट काट के उसमें मिला के भूसे मिला के उसको अपन खिलाते हैं, तो उससे अच्छा रहता है वो। अगर घास ही घास खाएंगे तो जो ज्यादा नुकसान करता है उन्हें, घास घास अकेले खाएंगे तो, और भूसे मिला के खिलाएंगे तो अच्छा रहता है उनको, सेहत अच्छी,
1: दूध वगैरह
0: दूध अच्छा निकलता है।
1: अच्छा,
0: भूस मिला के खर मिला के अपन उसको खिलाते हैं तो अच्छा निकलता है दूध वगैरह उनका।
1: और जो गर्भवती पशु हो जाते हैं उनकी क्या खास देखभाल करना?
0: कुछ नहीं, जो पशुओं का देखभाल कुछ नहीं है, जैसे ज्यादा पानी आ रहा है तो घर में बांध दो, मौसम खराब हो रहा है तो घर में बांध दो, नहीं तो चल रहा है टगर में पानी तो छोटा छोटा पानी बरसता है तो कोई दिक्कत नहीं आती उससे पानी।
1: अच्छा,
0: गाय भैंसों के लिए कोई वो
1: थोड़ा सार सूखा रखना पड़ेगा।
0: हाँ, और अपन सार सार बांधते हैं ना, उसकी थोड़ी गीला नहीं होना चाहिए वो,
1: तो उसको सूखा रखने के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं?
0: आजकल तो क्या है, लोगों ने फर्श लगा रखे हैं, गिट्टी सीमेंट बिछवा रखे हैं।
1: अच्छा,
0: तो सूखा भूल जाता है।
1: हाँ,
0: पहले तो क्या गिट्टी सीमेंट कुछ आती नहीं,
1: मिट्टी का
0: रहता था,
1: हाँ,
0: था
1: ना,
0: पानी भर जाता था, जो मुझे शौचालय के रखते वही बनने का उसमें भरा रहता था। अब तो क्या पानी वगैरह निकल जाता है, पेशाब वगैरह करते हैं ना वो पशु पक्षी।
1: अच्छा,
0: निकल जाए ऐसी,
1: उसमें जल की
0: उसमें नाली बना देते, नाली में निकल जाता है, जो गोबर वगैरह करते हैं तो अपन फड़ुआ साइड में कर दो, साफ सफाई बनी रहती है, आज सब में साफ सफाई बनी रहती है सारों में वगैरह।
1: अच्छा, जो गर्भवती जो रहते हैं पशु तो इनकी क्या खास खिलाई पिलाई करनी चाहिए?
0: इनकी खास पिलाई कुछ नहीं, घर खिला दो अपन, जैसे ज्यादा हरा घास खिला दो,

0: अच्छा। सुबह घास भी खिला सकते हैं उनको, भूसा खिला सकते हैं, सानी वानी वगैरह सब खिला सकते हैं उसको।
1: बारिश भी हो रही है तब भी खेतों में काम करना है, पूरी देखभाल करनी है।
0: छोटा मोटा पानी पड़ता है तो बारिश किसान भीग जाए तो उससे कोई किसान पे फर्क नहीं पड़ता, किसान वैसे ही ताकतवंद होता है किसान तो वैसे ही।
1: थोड़ा अपने साफ सफाई वगैरह,
0: साफ सफाई वगैरह रखना पड़ती है।
1: अच्छा, आपने अपने खेतों में फल वगैरह के पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, फल फूल के, या अकेले आप मक्का लोग?
0: नहीं, फल फूल लगाते तो, लेकिन अभी अपन ने लगाया नहीं है। अब जैसे कटहल का पेड़ है, कुछ लोग लगा देते हैं तो हो जाते हैं, कुछ आम भी लगा देते हैं, आम हो जाते हैं कुछ लोग।
1: अच्छा, अब जैसे अब अभी ये वाला जो मौसम है, ये तो वृक्षारोपण के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है।
0: हाँ जी, अच्छा मौसम है वृक्षारोपण। अपने छोटे छोटे जैसे जामफल का पेड़ धरा है, जामुन का पेड़ धरा है जी, अपन लगा सकते हैं। आम का पेड़ धरा है जी, उखड़ उखड़ के अपन लगा सकते हैं।
1: ऐसे भी कई सलाह दी जाती है कि जो अपने खेत की मेड़े हैं, मेड़ों के ऊपर अच्छे वृक्ष वगैरह लगा लिए जाए तो उससे मिट्टी का कटाव वटाव भी रुक जाता है और फल भी अच्छे मिल जाते हैं।
0: ऐसा लगाते ना, जैसे सफेदा का पेड़ हैं लगा लेते हैं, मेड़ों का लगा लेते हैं, आम का पेड़ लगा लेते हैं, और क्या, और छोटे छोटे पेड़ पौधे फूल वगैरह भी लगा लेते हैं मेड़ों।
1: फूलों से भी आमदनी हो जाती है अच्छी, साल भर ही लगने रहते हैं फूल।
0: हाँ, फूल तो लगते रहते हैं, और क्या,
1: कहीं किसी उसमें कहीं
0: तो बरसात में तो कजू कजू और वैसे ही फूल लगते रहते हैं, तो गाँव में फूलों की कोई कमी नहीं आती गाँव में थोड़ा, और क्या।
1: ठीक है मोहर सिंह भैया, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: और आपके खेतों में खूब अच्छी फसल लहलाए, हम ऐसी आशा करते हैं।
0: जी जी।
1: तो भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे मोहर सिंह प्रजापति से भेंट वार्ता। आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: अब भैया बहनों हमें विदा दीजिए और स्वीकार कीजिए निहारिका सक्सेना की राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: चला बोल रहा
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता चलती थी। अब किसान परंपरागत

0: से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: ग्रेट ग्रेट, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल समेत नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आते जाके खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जा कार्यक्रम के प्रायोजक हते कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: खमेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे न केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशल्स की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर, जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है, इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, मैरिटाइम डिफेंस है, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी, तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
0: जी बिल्कुल सही कहा।

0: अपने एम्बेसडर सज्जनार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध हैं, जो गहरे संबंध हैं, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं। तो ये इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है, खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार, और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है। चाहे हम अगर COVID-19 के दिनों से देखें, जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन्स पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई, और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक $175 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
1: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है, जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे 5 वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे, कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे, और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं, और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6,000 हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6,000 हैं, करीब 10-11,000 वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता की है, और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है, क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा
0: जी।
1: जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है, अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये एस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको, इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमिटेड एक्सरसाइजेस हर 2 साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं, और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था, तो परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी आए थे यहाँ पर फरवरी में
0: जी बिल्कुल,
1: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया
0: जी।
1: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशेल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब

0: 2021 में बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया और फिर 21 जनवरी चार पांच दिन बाद ही हमने सेशल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख के आसपास है। छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है,
1: जी
0: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी
0: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार, केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहां पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो दो या तीन बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश है उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है। एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है। दूसरा है, चाहे देश छोटे हों परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है, परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत प्रकृति की बात, आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम का सातवां एपिसोड।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
3: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है।

0: भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहां पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहां पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये दिशा रहा है?
1: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक को एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहां जमा करिए, और यहां पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
0: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
1: यस,
0: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
1: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक IC एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए

0: क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए में मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ, अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो 1 ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं, तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं, तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पे विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो CAG ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है, 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक

0: स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए। तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है,
1: नहीं
0: क्या है
1: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
0: जैविक है,
1: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
0: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या
1: थर्मोकोल की रहती थी
0: अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
0: पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि हुई है,
1: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
0: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल है बड़े होटल वो स्थापित है, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
0: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
1: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते टेंडर करते कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22, तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
0: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का, अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
1: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
0: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं,
1: हाँ,
0: उनके बल पे ये
1: बिल्कुल चल रहा है,
0: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
1: लोकेशन पे ऐसा
0: लोकेशन पे

0: गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
1: बिल्कुल जानकारी।
0: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
1: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में ही
0: अंबिकापुर में। तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
0: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
1: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर कितना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह की चीजों पे भी कुछ।
0: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
1: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
0: उसके रैपर
1: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10-15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
0: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
0: जापान कोरिया यहां
1: सभी,
0: से भी
1: सभी जगह
0: प्रशंसा आई थी।
1: अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
0: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: सदाबहार नगमे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट

0: महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: इट इज वेरी इंप्रेसिव दैट कंट्री

0: Conditions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी

0: हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से। आवाजें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

हमारे आगे फिरती तेरे मुक्की आते खींची गई बेटी तेरे लिए खालू सीने में गोली फिर क्यों तो मुझको ही गोली देती हटे नजर ना तेरे फिकर से चाहे उंगली सीधे फिकर पे जो निशाना ताना जाना तेरी नजरों पे शूटर करने लगे सब मुझे कर

Yeah. Mira, bro. Rasta.

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से, आवाजें ऐश किंग और जिगर सरैया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

करो टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, रानी करो टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डंट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी।

तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो ऊंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और

0: वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से, आवाज ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

एक है दिल में उठी आलापों से है बजी हंसों में तू मत हमसे रागों सा केसर के धागों सा युगल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है?

चम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुने पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा

कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो। हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुने उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुने राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल।

हुई, लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव ताटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वाज से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज्यादा, एक से मुसाफिर हैं, एक सा मुकद्दर है। मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमान में।

आज रात के दश्त में फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। उफ, चिराग पे चिराग रख दिए हैं तुमने।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती। वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू दिल भी

खाली खाली है बहुत। तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्सा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुवन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आंखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आंखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आंखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरूआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक